0: जिंदगी के राज, हवा की लहरों से बन के आवाज, ये है प्रोग्राम चराग। पेश किया जा रहा है हर जुमा शाम 7 से 8।
1: From the studios of Inspire FM, the time is now 6:30.

या अल्लाह इंस्पायर FM को अपनी रहमतों और बरकतों का मरकज़ बना दे। इस इदारे से वाबस्ता तमाम लोगों को सेहत, आफ़ियत, इखलास और इस्तकामत अता फरमा। या रब्बुल आलमीन, इस आवाज़ को हमेशा खैर, मोहब्बत, इत्तेहाद और दीन इस्लाम की खिदमत का ज़रिया बनाए रख। इस प्लेटफार्म के ज़रिए नशर होने वाले हर नेक पैगाम, हर हमद, हर नात, हर दुआ और हर खैर के काम को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह, लुटन और गिरदनवा में बसने वाले तमाम सामीन के घरों में सुकून, रिज्क में बरकत, औलाद में खैर, सेहत में अफ़ियत और दिलों में मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता फरमा। बीमारों को शिफा, परेशान हालों को आसानी, बेरोज़गारों को रोज़गार और गमज़दा दिलों को सुकून अता फरमा। सामीन कराम, आप भी इस खूबसूरत बज़म का हिस्सा बन सकते हैं और अपनी आवाज़ दूसरों की समातों की नज़र कर सकते हैं। आइए हमारे स्टूडियो में हमारे मेहमान बनिए, या 0158248122 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज़ में हमद, नातिया, सुफियाना कलाम दूसरों की समातों की नज़र कीजिए और सुनते रहिए इंस्पायर FM 105.1।

और पूरे बरतानिया में अमन अमान कायम फरमा। हमारे नौजवानों की हिफाजत फरमा, इन्हें नेक रास्तों पर चलने की तौफीक दे। हमारे घरों में मोहब्बत, बरकत और सुकून अता फरमा, और हर किस्म की दुश्मनी, नफ़रत और फसाद से महफूज रख।

उमर की कमाई इसके हाथ से यूं निकल जाए जैसे हाथों के तोते उड़ जाते हैं, तो वह क्या करे। कमाइयां साथ न जाए और साथ ले जाने के लिए कोई कमाई ना हो, तो ऐसी सूरत में जिंदा रहना भी क्या जिंदा रहना है।

जब इंसान के आजा छुआरा इससे बागी हो जाए, इसके अपने अपने न रहे, इसके मावन इसके अपने मावन इसके खिलाफ गवाह बन जाए और वो देखता रह जाए, उसे महसूस हो कि उसका अपना वजूद भी इसके अपने काम का न था, तो वो क्या महसूस करेगा? उसे इस चीज का एहसास हो कि जो करना चाहिए था उसने नहीं किया और जो कुछ नहीं करना चाहिए था वो कुछ उसने किया, तो अब वो किस उम्मीद पर जीने की तमन्ना करे? जो कुछ हासिल किया गया यही उसके अपने खिलाफ गवाही है। अब अपने हासिल से निजात पाना भी मुमकिन नहीं, भागना भी मुमकिन नहीं, ठहरना भी मुमकिन नहीं। एक ऐसे इंसान की तरह जिसके वजूद के साथ एक टाइम बंधा हुआ है, जाने का टाइम, और वो खतरे से डरकर भागता जा रहा है। जिस खतरे से वो निजात चाहता है वो उसके साथ ही बंधा है। खतरा अंदर हो तो बाहर दौड़ना किस काम का? अपने अंदर के खतरे से अंदर की दौड़ बचा सकती है। अंदर की दौड़ क्या है इस बात की समझ ना आए तो जीने का क्या वजवास? अगर इंसान के पास नेकी के नाम पर इकट्ठा किया हुआ बल्कि लूटा हुआ माल मौजूद है और उससे नेकी सरजद ना हो सके तो इस माल को देखकर इस जीने से वहशत पैदा हो जाएगी। उस माल की क्या बरकत, उस माल का क्या फायदा जो किसी के काम ना आए, उस जिस्म का क्या फायदा जो किसी के काम ना आए। इस आदमी के लिए आने वाला जमाना गुजरे हुए जमाने से ज्यादा खौफनाक होगा। उसकी रात तारीख से तारीख तर होती जाएगी। वो अपने आप को जिंदा रहने के काबिल कैसे समझेगा? अगर इंसान ऐसी हालत में पहुंच जाए, अगर उसे तंगी हालात और तंगी ख्यालात का एहसास हो, अगर उसे हर तरफ तारीकियां नजर आए, अगर उसे जिंदा रहने का जवाब नजर ना आए तो भी इसे घबराना नहीं चाहिए। हम जिंदा रहने के लिए जो जवाब तलाश करते हैं उसके अलावा भी जिंदगी के जवाब मौजूद हैं। जिंदगी अता फरमाने वाले ने यह इनाम बेजवाज नहीं अता फरमाया, इसका कोई अमल बेजवाज नहीं, इसने कोई तहलीक इबस नहीं फरमाई, इसकी कोई बात बेमाना नहीं हो सकती। इंसान को मायूसियों के गुप्त अंधेरों में भी एक रोशनी का चिराग जो हमेशा रोशन रहता है नजर आ सकता है। सामी डार्कनेस से रोशनी का सफर कैसे किया जाए? यह चिराग कहां है? यह खुशियां कहां है? खुशियां बांटने से खुशियां मिलती हैं और यह चिराग पेशानी के अंदर होता है सामी, और ये सजदे में नजर आता है। बेबस इंसान का सजदा ही बस बेबसी का इलाज है। यही अंधेरों का सूरज है, यही निशाने मंजिल है और यही रफीक तरीक है सामीन। इरशाद है, तुम्हारे दिल सख्त हो गए जैसे कि वो पत्थर हो। आगे इरशाद है, मेरे पत्थरों से भी नहरें जारी हैं, गोया पत्थर भी पत्थर नहीं रहता। उसमें भी एक आयात है जिसको रिस्क दिया जा रहा है, अगर इसमें से नहर जारी हो, हम देखते हैं कि हर तरफ पत्थर दिल इंसान, सख्त इंसान, पत्थराई हुई आंखों वाले पत्थर के चेहरों के साथ नजर आते हैं। लेकिन अगर गौर से देखा जाए
تو انہی پتھروں کے اندر سے نہریں جاری ہیں. بے فکر انسان بھی بڑے بڑے فکروں میں مبتلا ہے. اپنے دل زندہ کرو، ہر طرف زندگی نظر آئے گی.

दोस्तों से भी मिला देगा, अच्छे लोगों से मिला देगा। वो वसीले पैदा करता है, वो मुसब्बिबुल असबाब है। उसके साथ दोस्ती लगाओ, मोहब्बत करो अपने रब से, टूट के चाहो अपने रब को। इश्क इस आदमी झुलसना बहुत मुश्किल काम है सामी, लेकिन ज्यों ज्यों आप प्रैक्टिस करेंगे, अपने रब की तरफ अपना कदम बढ़ाएंगे, जीने सीढ़ियां कदम आसान होते चले जाएंगे।

0: प्रोग्राम में एक प्यारा सा कलाम शामिल करना चाहूंगा। उम्मीद करता हूं आप करूंगा आप इससे माजूस होंगे। अल्लाह अकबर, या रब मेरा दिल बदल दे,
1: बदल दे दिल की दुनिया, दिल बदल दे। खुदाया फजल फरमा, दिल बदल दे। सुनूं मैं नाम तेरा धड़कनों में, मजा आ जाए मौला, दिल बदल दे। मजा आ जाए मौला।

बेखलूस सजदों से तुझको मिला कुछ नहीं, बेखलूस सजदों से तुझको मिला कुछ नहीं, दिल में अखलास ना हो तो है दुआ कुछ नहीं, लब पे तस्बी सजी दिल में मगर बोझ रहा, ऐसी इबादत से मिलता है सिला कुछ नहीं, तूने हर दर पे झुकाई है फकत अपनी जबी, अपने बातन से मगर तुझको मिला कुछ नहीं, अपने आमाल का चर्चा तू बहुत करता है, अपने किरदार में लेकिन है वफा कुछ नहीं।

सर में एक सौदा था बामोदर बनाने का, आज तक नहीं सोचा हमने घर बनाने का। यूं न रिंगती रहती कागजों पे तस्वीरें, वक्त जो मिला होता बालों पर बनाने का। यूं कहां भटकते हम ख्वाहिशों के सहरा में, यूं कहां भटकते हम ख्वाहिशों के सहरा में। फन अगर हमें आता मालो जर बनाने का, चल दिए अकेले ही जुस्तुजुए मंजिल में, चल दिए अकेले ही जुस्तुजुए मंजिल में। काम खासा मुश्किल था हम सफर बनाने।

सभी रिश्ते कहां अपने पराए होते हैं, सभी रिश्ते कहां अपने पराए होते हैं, आस्तीनों में भी सांप छुपाए होते हैं। न हर चेहरा हकीकत का अमी होता है, कई चेहरे फकत पर्दे सजाए होते हैं। ज़बां पर मेहर उल्फत दिल में खंजर लिए, कई लहजे बहुत मीठे बनाए होते हैं। जो अपनों की तरह बैठे हों पहलू में मेरे, वही अक्सर नए फितने उठाए होते हैं। वफा के नाम पर करते हैं जो दावे बोत, वही मौका देखकर रिश्ते भुलाए होते हैं।

जो अपनों की तरह बैठे हूं पहलू में मेरे, वही अक्सर नए फितने उठाए होते हैं। वफा के नाम पर जो करते हैं दावे बहुत, मौका देखकर रिश्ते बुलाए होते हैं। वफा के नाम पर करते हैं जो दावे बहुत, वही मौका देखकर रिश्ते बुलाए होते हैं। हमें तो गैर से इतना गिला भी क्या करना, ये जख्म तो अक्सर अपनों से खाए होते हैं। हर एक हाथ मिलाने को मोहब्बत न समझ, कहीं हाथों में पत्थर भी छुपाए होते हैं। जमाना देख के चल, हर किसी पर मत जा, यहां दोस्त बड़ी मुश्किल से कमाए होते हैं। सभी रिश्ते कहां अपने पराए होते हैं, आस्तीनों में सांप भी छुपाए होते हैं।

शाख से टूटे जो पत्तों को कोई फर्क नहीं पड़ता, शाख से टूटे जो पत्तों को कोई फर्क नहीं पड़ता, शजर का क्या, शजर के टूटने को कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अहले दिल थे ख्वाबों से रिश्ता निभाने वाले, जमाने का क्या, जमाने को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी जात के मौसम में इस कदर गुम है, किसी हंसने रोने को कोई फर्क नहीं पड़ता। जो अपने अहद की कीमत वफा से कम रख दे, उससे सच के झूठ होने को कोई फर्क नहीं पड़ता। चिराग बुझ भी गए तो हवा का क्या, अंधेरा उजाला होने को कोई फर्क नहीं पड़ता। छोड़ दे अब इसके दर पे दिल रखना, छोड़ दे अब इसके दर पे दिल रखना, इसके लौट आने ना आने को कोई फर्क नहीं पड़ता।

दिल टूटा हुआ है फिर भी मुस्कुराना पड़ता है, दिल टूटा हुआ है फिर भी मुस्कुराना पड़ता है, अपने हर दर्द को दिल में छुपाना पड़ता है, आंखों में नमी हो तो भी हंसना पड़ता है, लोगों के सामने खुद को खुश दिखाना पड़ता है, कभी यादें रुलाती हैं कभी खामोशी सताती है, फिर भी वक्त के साथ आगे बढ़ना पड़ता है, दिल चाहता है कोई दर्द समझ ले हमारा, मगर हर बात हर किसी को बताना नहीं होता, अंदर से बिखरे हूं तो भी चेहरे संभालना पड़ता है, अंदर से बिखरे हूं तो भी चेहरा संभालना पड़ता है, ये जिंदगी एक है यहां टूट कर भी मुस्कुराना पड़ता।

अगर आपकी नगा बुलंद होने से कासर है तो अपने पांव के पास देखो, कोई ना कोई चीज आपकी तवज्जो की मोहताज होगी, कुछ नहीं तो मोहब्बत का मारा हुआ परिंदा आपके लिए जिंदा रहने का जवाब मुहैया करेगा। यह कायनात आपकी तवज्जो की मोहताज है। कायनात से तवज्जो तलब करना इतना अहम नहीं जितना तवज्जो इसको तवज्जो देना, और यही जीने का जवाब है। दुनिया मायूस होकर जिंदगी के जवाब से जिंदगी के जवाब की रायगां तलाश में है। आप लोगों की इस तलाश को अपनी तवज्जो से सरफराज करो। दुनिया तवज्जो मांग रही है, अपना किरदो पेश आपकी अपनी निगाह तवज्जो का तलबगार है। इंसान पर कभी रास्ता जो है बंद नहीं होता सामीन, इंसान पर कभी रास्ता बंद नहीं होता। ये बात याद रखी जाए कि हर दीवार के अंदर दरवाजा है जिसमें से मुसाफिर गुजरते रहते हैं। मायूसियों की दीवारों में इसकी रहमत उम्मीद के दरवाजे खोलती रहती है। इंतजार तर्क न किया जाए, रहमत होगी, उम्मीद का चिराग जलेगा। वो वक्त जिसका इंतजार है आएगा, बल्कि वो वक्त आ ही गया। मायूसियों के बादल छट जाएंगे, चिरागा होगा, इंसान के करीब आ जाएगा। पत्थर मोम हो जाएगा, दिल मोहब्बत से मामूर हो जाएंगे, पेशानियां सजदों से सरफराज हो जाएंगी, जिंदगी को जिंदा रहने का इस्तेहकाक मिल जाएगा। इंसान मायूस ना हो, कश्तियां जला दी जाएं तो कामयाबी करीब आ जाती है। कामयाबी यही है कि जिंदगी को वसूख मिल जाए। आरजुएं पूरी ना हो तो बेआरजू रहने की आरजू पैदा कर दी जाए, यही बड़ी कामयाबी है। कामयाबी किसी नुक्ते का नाम नहीं, ये मजाज का नाम है। बड़े बड़े फातिहीन जंगे हारने के बाद भी फातिहीन ही रहे। हमारे पास मिसाल मौजूद है जिसे अल्लाह ताला ने फताए मुबीन करार दिया। करबला की शिकस्त फतह की बिशारत है। हम जिसे तारीकी समझ रहे हैं, यही सुबाए काजब तो सुबाए सादक का आगाज है। चलते चलते मंजिलें खुद ही सलाम करेंगी। दुनिया के खिलाफ फरियाद न करें, कोशिश करें कि कोई आपके खिलाफ फरियाद न करे। दूसरों को खुश करें, खुशी खुद ही मिल जाएगी, और यही जीने का जवाब है। मेरे प्रोग्राम का वक्त यहाँ समाप्त हुआ, ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह जिंदगी ने सांसों ने मोहलत दी तो अगले वीक इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ अपनी आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना और दूसरों का बहुत ख्याल रखिएगा। ये कलाम आपको ब्रेक के उस तरफ ले जाएगा, और ब्रेक के उस पार इंस्पायर फिल्म की बकिया नशरियात जारी सारी रहेंगी। मुझे दीजिए इजाजत, रब रखा।

0: जिंदगी के राज, हवा की लहरों से बन के आवाज, ये है प्रोग्राम चराग। पेश किया जा रहा है हर जुमा शाम 7 से 8।
1: फ्रॉम द स्टूडियोज ऑफ इंस्पायर FM, द टाइम इज नाउ 9:30।
2: द फॉलोइंग प्रोग्राम इज अ सीरा बाय अब्दुल नासिर जंगदा।

यकीन कौन है? तकवा वाले? तकवा क्या होता है? तकवा का लफ्ज तुम बहुत बोलते हैं उर्दू में भी और अपनी जबान में। हर मुसलमान को तकवा का माना आना चाहिए। तकवा का लफ्ज ही माना होता है डरना, बचना। तो अल्लाह से डरना और गुनाहों से बचना, ये तकवा होता है। मुत्तकीन कौन होते हैं? जो क्या करते हैं? गुनाहों से बचते हैं। किस लिए? अल्लाह से डरते हुए। हुदल लिल मुत्तकीन। तो ऐसे लोगों को ये किताब हिदायत देती है। अल्लज़ीना, मुत्तकी वो लोग होते हैं। ये उमिनूना, जो ईमान लाते हैं। ईमान का लफ्ज माना होता है तस्दीक, किसी चीज को कंफर्म करना। ईमान इज कंफर्मेशन। जैसे आप कोई न्यूज सुनते हैं, कोई आपको आके खबर सुनाता है, तो या आप उसको क्या करते हैं? मान लेते हैं, या आप उसको नहीं मानते। अगर आप मान लेते हैं तो इसका क्या मतलब है कि आपने उसको कंफर्म कर दिया कि दिस इज राइट। और कंफर्म करने के लिए क्या जरूरी होता है? कि इंसान का दिल भी उसको माने, जबान से भी उसका इकरार करे, और फिर अकॉर्डिंगली वो अमल भी करे। अल्लज़ीना युमिनूना बिलगैब। अलगैब क्या चीज़ है? अनसीन, जैसे अल्लाह सुबहान तआला की ज़ात, फरिश्ते और जन्नत जहन्नम। तो गैब और अलगैब में क्या फ़र्क है? गैब का मतलब है गायब चीज़ें, जो हमारी आंखों से गायब है। आम गैब का क्या मतलब है? जो गायब है, जो हमारी नज़रों से गायब है, ओझल है। लेकिन अलगैब और गैब में क्या फ़र्क है? अलगैब वो गायब चीज़ें जिन पर अल्लाह सुबहान तआला ने हमें ईमान लाने के लिए हुक्म दिया है। तो युमिनूना बिलगैब, वो लोग मुत्तकी जो होते हैं, ऐसी चीज़ों पर ईमान ले आते हैं, उनको कंफर्म करते हैं। तो गैब पर ईमान लाना जो है, उसको इतना अप्रिशिएट क्यों किया गया है? जो चीज़ आपके सामने है, बस मैं आपसे ये कहूँ क्या ये कलम है या ये कलम है, तो आप सब कहेंगे जी हाँ ये कलम है। क्यों? क्योंकि आप सब देख रहे हैं। तो इसमें क्या बड़ी बात है कि जो आप देख रहे हैं उसमें हाँ में हाँ मिला रहे हैं? तो असल कमाल क्या है कि अल्लाह सुबहान व तआला पर एतमाद करते हुए उन चीज़ों को मान लिया जाए जो मानने के लिए कहा गया है। किस पर एतमाद करते हुए? अल्लाह सुबहान व तआला पर। अल्लाह तआला ने बराह रास्त हमें नहीं बताया, लिहाजा हमें किसके ज़रिए बताया? पैगंबर के ज़रिए बताया, तो पैगंबर को भी मानना होगा फिर। और फिर पैगंबर और अल्लाह के दरमियान क्या चीज़ थी? फरिश्ते जिब्रील अलैहिस्सलाम, तो उनको भी हमें मानना होगा। तो ये सारी चीज़ें फिर ईमान के अंदर शामिल हो जाती हैं। वयुकीमूना अस्सलात, और नमाज कायम करते हैं। कायम करने का लफ्ज़ी माना क्या होता है? किसी लेटी हुई चीज़ को सबसे पहले खड़ा कर देना। जब कोई चीज़ खड़ी हो जाती है तो उसकी अपनी असली हालत पूरी नज़र आने लगती है। मसला अगर ये कलम लेटा हुआ है तो इसका कुछ हिस्सा आप पर वाजे नहीं होगा, लेकिन जब ये खड़ा हो गया तो क्या हुआ? पूरी तरह वाजे हो गया। तो इसी तरह नमाज कायम करने में कुछ चीज़ें आती हैं, और वो हैं वो शरायत और वो अरकान जिनको अदा किए बगैर नमाज नहीं होती। कौन कौन से हैं वो? नमाज कायम करने की शरायत क्या है? पाक साफ होना, किबला रुख होना, वक्त की पाबंदी, जिस तरीके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको अदा किया उस तरीके पे अदा करना, सुजूद और रुकू वगैरह एतदाल के साथ करना। एतदाल का मतलब क्या? इत्मीनान के साथ करना, खुशू व खुजू के साथ अदा करना। और इसमें मर्दों के लिए जमात से नमाज अदा करना भी इकामत सलात का हिस्सा है। और फिर जमात जब होती है तो उसमें सफ़ों की दुरुस्तगी, वो भी इकामत सलात का हिस्सा है। और ख्वातीन के लिए कोई ख़ास चीज़? वैसे तो मर्दों के लिए भी है, लेकिन इकामत सलात में दुरुस्त लिबास पहनना भी आता है, सतर की पाबंदी। बाज़ लोग कहते हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस जैसे हो जिस हाल में हो वैसे ही अदा कर लो। सलात का लफ्ज़ ही माना दुआ का है, तो इसका मतलब कोई भी दुआ कर ले हम तो नमाज कायम हो जाएगी। तो सलात और अस्सलात में फ़र्क है। अस्सलात क्या होती है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक अल्लाह की इबादत करना। युकीमून अस्सलात व मिम्मा। मिम्मा का क्या मतलब है? उसमें से जो। इससे पता ये चलता है कि जो कुछ अल्लाह ने हमें दिया है, ज़रूरी नहीं कि सारा ही हम दे दें। मिन माँ का क्या मतलब बनता है? उसमें से कुछ हिस्सा। कितना, किस किस शक्ल में हमें देना होता है? नंबर एक, ज़कात वाजिबा। नंबर दो, सदकात मुस्तहब्बा। नंबर तीन, नफकात लाजिमा। नफकात लाजिमा में क्या चीज़ आती है?
कुरान पर अमल हो नहीं सकता ना जब तक हमें ये ना पता कि